0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

क्या बात है, जो भी है सब तेरा मालका, शुक्राना ही दे विच रहांगे ते सदा ही खुश रहांगे। प्रोग्राम सर्व रेडियो तुहाडे होस्ट सरबजीत सिंह दे नाल ते स्टूडियो दा नंबर 905-673-3337-9056-733-3337। ते अगे चल के आपां गलबात करांगे यूनी ग्लोबल एडवाइजरी दे सारांश जी नाल, जो कि सानू एक वधिया इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करनगे भी असी किवें स्टडी कर सकते हैं, सैकेंड कैरियर दे लई की गवर्नमेंट साडी हैल्प करदी है, किदां दा लोन सानू मिल सकदा है, ते उहदे भी गलबात होएगी सारांश दे नाल। 437-264-3175 ते तुसीं गलबात कर सकदे हो। 437-264-3175 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी।

होता है मित्रों, मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी, बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकदा, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकदा। ते कहिंदी है गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकदा। कहिंदी है जे तुसी वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है उह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर है, जिन्हां ने पैट रखे हुए है, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जाता। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा है, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा है, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जाता। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337 एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच ये चीज़ आई है। कहिंदी है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदां ही बस एक जाली समाइल नहीं हुंदी, एक फेक समाइल, तुसीं बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा उह हासा नहीं आ रहा, बस तुसीं समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जाता। आराम नाल बैठे हो बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते उह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ।

यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिडोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर। कैसे हो आप? आपका हफ्ता कैसा रहा? आपके काम कैसे चल रहे हैं? आप कैसे महसूस कर रहे हो? हमारे श्रोता के ऊपर उस ऊपर वाले की दया कृपा बनी रहे, खुशहाल रहे। बस इन लहरों के जरिए ही हम आपको ये भगवान का नाम भेजते हैं, तो यही आपको मौका मिलता है थोड़ा ऊपर वाले का नाम सुनने का और इंजॉय करने का। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट्स, लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए मिलेगी। आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लें, उनके वेबसाइट पे जाइए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com। अपने ऑर्डर बुक फादर्स डे से पहले पहले ही कर लीजिए। 905-799-0045-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल सकते हैं, कर सकते हैं। अब आजकल शादियों का सीजन है, मंगनियों का सीजन है, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे पे आपको सोने के गहने चाहिए, सोने की बार चाहिए, जहाँ फिर आपने डायमंड्स अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिए। 905-673-0100-9056-73-0100 पे आप एल मदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। आपने किचन और वाटरलू ग्वाल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिएगा। 519-546-1260-5419-546-1260 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में। अब आपने लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया लेनी है और आपको मिलेगी समोसा उनकी। बहुत सारी लोकेशंस हैं, तीन लोकेशंस हैं। और फिर आपके लिए उनका जो सारा आपको खाना मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी, वो एकदम फ्रेश मिलेगी। क्या है कि उनकी टर्नओवर जो है ना, वो आपको उनकी बहुत है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे कभी भी तो उनके बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है खाने की। तो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा जो भी मिलेगा।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਨ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, आपने घर खरीद लिया, फिर आप मूव भी करेंगे। समर में बहुत मूविंग होती है, लोग बड़े घर बदलते हैं, तो आपने भी मूव करना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही ट्रक अपना बुक कर लीजिए 416-524-8004-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो जब पहली बारी मिलते हैं और फिर सारे बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर बहुत सालों बाद ये एक चीज हो जाती है कि दिलना चाहिए कि क्या वादे हुए थे, तो क्या क्या कुछ कहा गया था, कितने ख्वाब दिखाए गए थे। तो उसके लिए निशी एंड राजा, रफी और आशा जी का गाया हुआ जी स्कूल के थे तो गया। 1963 में
2: mm-hmm.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मास्टर कलेजन दीपू अब आपके लिए लंदन में सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का भी कलेजन का काम करवाना है, लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, तो आप मास्टर कलेजन दीपू पे जाइए और जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिए 647-225-1155, 6472251156। अब मास्टर कलेजन डिपो, पहले वो ब्रैम्पटन में थे, फिर हमिल्टन में, अब लंदन में है उनकी लोकेशन। तो आप उनसे वहाँ लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलेजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलेजन डिपो पे जाइएगा। अब आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, और डिजिटल वाले बारबेक्यू चाहिए आपको लेटेस्ट, तो सारा सामान आपको, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो आपने फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत बढ़िया डील देंगे, बढ़िया क्वालिटी देंगे। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पे जाइए अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पर कॉल कर लो। 9057990045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अगर ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी तरह का भी आपको काम करवाना है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिसमन रोड मिसिसागा में मौजूद है। आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 9056250055। टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत सिंह बैंस, 416-677-1316-677-1313। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना चुना है दिलीप कुमार। अभी दिलीप कुमार जी के जो गाने होते थे सभी चुलबुले बड़े होते थे, तो ये भी एक ऐसा गाना। शिकारी फिल्म आई थी 1960। एक्चुअली असल में ना इसमें सुजीत है, मेरे से गलती हो गई, सुजीत इसमें हीरो के रोल में है। देखो तो उनका तो कभी सुजीत के बहुत कम मूवीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप वो हीरो के, इस फिल्म में हीरो है। आप जरूर देखिएगा शिकारी फिल्म।

0: जी सुन रहे हैं संसार, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संसार।
1: Thank you.

0: आप किस तरह ये ठीक तो अगर आपको प्रोग्राम सा रहा है ताई कि आपको है और जब छोड़ कर क्या आपको तो आज नहीं है तो क्या है सुन भैया खूब जी आप रहा होगा जातो और साधना हाय मेरा दिल मोटा नैनो
1: मानों से कोई शोक

0: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हफ्ते की जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंसिडेंट्स होती हैं हमारे आसपास, जरूर कुछ ना कुछ होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम आता है तो आप वो सब सुन चुके होते हो, तो फिर पुरानी खबरों को दोहराना वो फिर न्यूज़ नहीं रहती है ना। तो इसलिए मेरा बस काम होता है आपका 100% मनोरंजन। ठीक है जी, अब मैं यहीं पर लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड, वट एवर यू डू इंजॉय योर सेल्फ, और अपना भी इंजॉय करो, दूसरों का भी इंजॉय करना करो। और कुछ जब बात कुछ कहते हो तो देन थोड़ा सा सोच करके कहिएगा, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट मत कीजिएगा। और जब फिर आपके लिए भी बाद में जब आप अपने आप को फेस करते हो तो महसूस होता है कि हाय, मैंने उसका आज दिल दुखा दिया, क्यों किया। बस इससे बचिए और अपने आप को भी खुश रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाण सुहाता पला। हैव ए वंडरफुल का आपके हिंदी के जरूर।
1: Okay.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी, 6476702 2023 6 7 3 702 V 23 license number 10394.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder, 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.
7: Oh, haan bhai. अब बड़ी हाईवे ते डोर पोरी होई खड़ी है, की गला?
8: आ एक्सीडेंट हो गया, कार दा टो ट्रक है, नू फोन कर लगी हां.
7: ओ टो ट्रक छड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते.
8: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां ने डील कर दिया, नाल ही हुन मेरी कार दा मिशन टेस्ट करा दो, ना नवे टायर पवा दियो, उधरो ब्यूटी पार्लर जाना, उधरो कार दा पंगा. आ शेडी करो, स्काईडोम वाले नू फोन करो, 905-876-9878.
7: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे.
9: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी अज ही संपर्क कर सकदे हो चमकौर सिंह नाल, 416-662-1313 4166621313.

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर। कैसे हो आप? आपका हफ्ता कैसा रहा? आपके काम कैसे चल रहे हैं? आप कैसे महसूस कर रहे हो? हमारे श्रोता के ऊपर उस ऊपर वाले की दया कृपा बनी रहे, खुशहाल रहे। बस इन लहरों के जरिए ही हम आपको ये भगवान का नाम भेजते हैं, तो यही आपको मौका मिलता है थोड़ा ऊपर वाले का नाम सुनने का और इंजॉय करने का। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट्स, लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए मिलेगी। आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लें, उनके वेबसाइट पे जाइए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com। अपने ऑर्डर बुक फादर्स डे से पहले पहले ही कर लीजिए। 905-799-0045-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल सकते हैं, कर सकते हैं। अब आजकल शादियों का सीजन है, मंगनियों का सीजन है, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे पे आपको सोने के गहने चाहिए, सोने की बार चाहिए, जहाँ फिर आपने डायमंड्स अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो एल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। एल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद हैं। एल मदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिए। 905-673-0100-9056-73-0100 पे आप एल मदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। आपने किचन और वाटरलू ग्वाल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिएगा। 519-546-1260-5419-546-1260 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में। अब आपने लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया लेनी है और ये आपको मिलेगी समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे। उनकी बहुत सारी लोकेशंस हैं, तीन लोकेशंस हैं। और फिर आपके लिए उनका जो सारा आपको खाना मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेंगी, वो एकदम फ्रेश मिलेंगी। क्या है कि उनकी टर्नओवर जो है ना, वो आपको उनकी बहुत है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे कभी भी तो उनके बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है खाने की। तो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा जो भी मिलेगा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटम $4.75 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड इटोबिको वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, अपने घर खरीद लिया, फिर आप मूव भी करेंगे। समर में बहुत मूविंग होती है, लोग बड़े घर बदलते हैं, तो आपने भी मूव करना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही ट्रक अपना बुक कर लीजिए 416-524-8004-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो जब पहली बारी मिलते हैं और फिर सारे बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर बहुत सालों बाद ये एक चीज हो जाती है कि दिल चाहिए कि क्या वादे हुए थे, तो क्या क्या कुछ कहा गया था, कितने ख्वाब दिखाए गए थे। तो उसके लिए निशी एंड राज रफी और आशा जी का गाया हुआ जगह स्कूल के थे तो बंधन 1963 में।
2: तो

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मास्टर कलेजन डीपू अब आपके लिए लंदन में सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का भी कलेजन का काम करवाना है, लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, तो आप मास्टर कलेजन डीपू पे जाइए और जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिए 647-225-1155 6472251156। अब मास्टर कलेजन डिपो, पहले वो ब्रैम्पटन में थे, फिर हमिल्टन में, अब लंदन में है उनकी लोकेशन। तो आप उनसे वहाँ लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलेजन का काम करवाना हो, तो मास्टर कलेजन डिपो पे जाइएगा। अब आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, और डिजिटल वाले बारबेक्यू चाहिए आपको लेटेस्ट, तो सारा सामान आपको, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो आपने फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत बढ़िया डील देंगे, बढ़िया क्वालिटी देंगे। तो topchoiceelectronics.com पे जाइए अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पर कॉल कर लो। 905-799-0045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अगर ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी तरह का भी आपको काम करवाना है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिसमन रोड मिसिसागा में मौजूद है। आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 905-625-0055। टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत सिंह बैंस 416-677-1313-1313। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना चुना है दिलीप कुमार। अभी दिलीप कुमार जी के जो गाने होते थे सभी चुलबुले बड़े होते थे, तो ये भी एक ऐसा गीत है। शिकारी फिल्म आई थी 1960 में। एक्चुअली असल में ना इसमें सुजीत है, मेरे से गलती हो गई, सुजीत इसमें हीरो के रोल में है। देखो तो उनका तो कभी सुजीत के बहुत कम मूवीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप वो हीरो के, इस फिल्म में हीरो है। आप जरूर देखिएगा शिकारी फिल्म।

0: तो आप किस तरह ये ठीक तो अगर आपको प्रोग्राम सारा रहा है ताई कि आप क्या और ये है जो है और जब छोड़ कर क्या ता है को तो आज नहीं है तो क्या है सो भैया इस खूब जी बिल्कुल ये आप ना होगा गाइस सो
1: तीन रातों और साधना

0: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हफ्ते की जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंसिडेंट्स होती हैं हमारे आसपास, जरूर कुछ ना कुछ होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम आता है तो आप वो सब सुन चुके होते हो, तो फिर पुरानी खबरों को दोहराना वो फिर न्यूज़ नहीं रहती है ना। तो इसलिए मेरा बस काम होता है आपका 100% मनोरंजन। ठीक है जी, अब मैं यहीं पर लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड, वट एवर यू डू इंजॉय योर सेल्फ, और अपना भी इंजॉय करो, दूसरों का भी इंजॉय करना करो। और कुछ जब बात कुछ कहते हो तो देन थोड़ा सा सोच करके कहिएगा, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट मत कीजिएगा। और जब फिर आपके लिए भी बाद में जब आप अपने आप को फेस करते हो तो महसूस होता है कि हाय, मैंने उसका आज दिल दुखा दिया, क्यों किया। बस इससे बचिए और अपने आप को भी खुश रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाने सुहाता पला। हैव ए वंडरफुल का आपके हिंदी के
1: Thank you.

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

कहानी नहीं मैं सच लिखूंगा, सजदे नहीं मैं हक लिखूंगा। कहानी नहीं मैं सच लिखूंगा, सजदे नहीं मैं हक लिखूंगा। लिखूंगा अपनियां हारां नूं, लिखूंगा अपनियां हारां नूं, जित्तां अपनियां घट लिखूंगा। हौमें मारन दी कोशिश है मेरी, हौमें मारन दी कोशिश है मेरी। बदनामी अपनी झट लिखूंगा, बदनामी अपनी झट लिखूंगा। ते नहीं लिखूंगा किसे बारे कुछ भी, ते नहीं लिखूंगा किसे बारे कुछ भी। जिथे भी नाम आऊ उथे बस रब लिखूंगा, बस रब लिखूंगा।

0: With your friends, not having a plan for a safe ride home can leave you in a bad spot. You can end up riding in an ambulance, a police car, or a hearse. These unplanned modes of transportation are costly alternatives and do not take you home. Your plan for a safe ride home can include a taxi, a designated driver, or public transit. Drink responsibly, choose your ride. Thanks from Arrive Alive, Drive Sober, Desjardins Insurance, and the Beer Store.
1: हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी
1: हां जी ते पता है इसका की मतलब
2: सनस्क्रीन हाइड्रेशन एनका
1: ते सेविंग्स भी क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च
2: ओहो
1: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने
2: ओ भाई एता गर्मा गर्म डील है
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब.ca ते जाओ
3: होलसेल क्लब होल लॉट ऑफ वैल्यू

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kalon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका
0: ते सेविंग्स भी।
1: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
0: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
2: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
3: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
4: दिस इज AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.